0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা
1: 107 FM রেইনবোতে, নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:04 स्टूडियो की घड़ी में वक्त 107 AIR FM रेनबो दिल से दिल तक पर मैं शुतिश्वता आप सबके साथ और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जिसका नाम है नॉन स्टॉप गपशप। जी हाँ दोस्तों, आज हम गपशप करेंगे किस विषय पर, ये भी बता दूँ आपको। आज हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा और क्यों करेंगे ये बात। हम इसलिए करेंगे क्योंकि आज जो है प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन है। प्रियंका चोपड़ा को हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी सभी श्रोताओं की तरफ से, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ एक और एक्ट्रेस का आज जन्मदिन है, भूमि पेडनेकर। जी हाँ दोस्तों, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, उन्हें भी दोस्तों उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रुक करते हैं गीतों की ओर, क्योंकि सिर्फ बातें तो नहीं हो सकती, गीत तो जरूरी है, क्योंकि मूड जो है एंटरटेन तभी होता है जब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत जो है हमारे कानों तक पहुंचते हैं। रुक करते हैं पहले गीत की ओर।

एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने बिना किसी ग्लैमर इमेज के सिर्फ अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। 18 जुलाई 1989 मुंबई में हुआ था इनका जन्म। अभिनय से पहले उन्होंने करीब 6 साल तक यशराज फिल्म्स में आर्टिस्ट कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। दम लगा के हईशा से इन्होंने शानदार डेब्यू किया। एक ओवरवेट दुल्हन का किरदार निभाकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने लगभग हर तरह की सामाजिक विषयों पर फिल्मों पर आधारित फिल्मों में काम किया है। कई अलग अलग किरदार निभाए हैं। सामाजिक फिल्मों की अगर बात करें तो इसमें से टॉयलेट एक प्रेम कथा, इस फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं, है ना।

10:28 स्टूडियो के घड़ी में वक्त। और दोस्तों, अगर प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो आज 18 जुलाई को इनका भी जन्मदिन है और 1982 में झारखंड के जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ। प्रियंका चोपड़ा ने बचपन में काफ़ी समय भारत के अलग अलग शहरों में गुजारा और कुछ समय जो है अमरीका में भी बिताया। साल 2000 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और इसको जीतने के बाद उन्होंने जो है भारत का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही में यहीं से उनकी फिल्मी सफर की भी जो है शुरुआत हुई। अगर बॉलीवुड की बात करें तो द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, ये रही उनकी पहली फिल्म बॉलीवुड में और इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं और कभी उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। एतराज, अंदाज, क्रिश, डॉन, फैशन, बर्फी, मेरी कॉम, बाजी, मतलब ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने जो है काम किया। बाद में उन्होंने हॉलीवुड में भी जो है अपनी पहचान बनाई और कई सारी फिल्मों में, सीरीज में काम किया।

उम्मीदें नए भारत की, तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से।

0: शनिवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वाह खूब खूब आभार अपना गुजरात में हालो मने नी आगर बहुत नाम नो गाम छे
2: क्या मजूर वर्ग बहु छे
1: तो मने एक गीत नी फरमाइश करी थी
2: अने त्यां कई थाकी ने लोका सांजे मौजू करता हो त्यारे कई

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आज के दिन
2: दस बज के 44 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप नॉनस्टॉप गपशप, मैं सुष्मिता आप सबके साथ। और अब वक्त है कि मैं आपको बताऊं कि आज का दिन क्यों खास है। तो दोस्तों, आज के दिन 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया कि हर वर्ष 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा। इस दिन दुनिया भर के लोगों को ये अपील की जाती है कि वो कम से कम 67 मिनट समाज की सेवा के लिए दें। 67 मिनट इसलिए क्योंकि नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 67 वर्ष मानवता की सेवा में समर्पित किए थे और उन्हीं को याद करके आज के दिन ये दिन मनाया जाता है।
1: आज के दिन बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, FM रेनबो पर।

0: चुटकी नुस्खे।
1: अब नुस्खों का क्या है कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अब नुस्खे कुछ यूं होते हैं कि जिससे आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए या फिर आपकी जरूरत के वक्त आपके आसपास की चीजों से आपका काम बन जाए। तो ऐसे में एक नुस्खा आज मैं आपके लिए ये लाई हूँ कि फ्रिज में अगर आप कोई कटा हुआ नींबू रख रहे हैं तो उसे अगर थोड़ा सा नमक लगा के रखेंगे तो वो अगले 2-3 दिनों तक जो है ताज़ा रहेगा। अगर आपके बारिश की वजह से जूते कभी कभी भीग जाते हैं, राइट, तो ऐसे में अगर बदबू आ रही है आपके जूतों से तो उसमें रात में जो है टी बैग या फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा रख सकते हैं जिससे आपकी जूतों की बदबू जो है दूर हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हैं किसी वजह से, अब पूरे हफ्ता भर अगर आप काम करते हैं तो थकान तो हो जाती है, अब सैटरडे संडे मिलता है थोड़ा सा आराम करने के लिए, तो अगर अपने पैरों को भी आप थोड़ा आराम देना चाहते हैं, साथ में उसे थोड़ी सी सफाई भी हो जाए ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो जो है गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर और थोड़ा सा शैम्पू डालकर जो है आप पैर को 10-15 मिनट भिंगो कर रख सकते हैं। इससे जो है आपके फायदे को होंगे, आपके पैर जो है सुंदर भी दिखेंगे, साफ भी होंगे और जो है आपके पैरों के थकान को, थोड़े से अगर दर्द है तो उसको आराम भी मिलेगा।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि मुझे कहना होगा अब आप सबको टाटा एंड बाय बाय। सुनते रहिए साथ रहिए 107 एफएम रेनबो। 10 बजे तक छोड़ जाऊंगी आपको अरिजीत सिंह की आवाज में द स्काई इज पिंक फिल्म से इस गीत के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिसको भी जरूरत हो अगर आप कर पाए तो बिल्कुल मदद कीजिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कालोजयी बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गानदोरिया 107 FM रेनबो ते। गानदोरिया गानदोरिया छुए जाक मन, छुए जाक मन।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार और सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका दोस्त आरजे अंकित यहां पर है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए दिन का तड़का। दोस्तों, तीन का तड़का में रहने वाला हूं, चार बजे तक आपके साथ लेकर आया हूं कुछ धमाकेदार ट्रैक और रहने वाला हूं जैसे कि मैं बताया चार बजे तक। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम स्पाइलर ट्रैक के साथ।

फिल्म कॉकटेल 2 से दोस्तों आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में एक बहुत ही प्यारा संगीत, प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। और दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मेक इन इंडिया अभियान का एक सफल उदाहरण बताया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जहाँ हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन परिचालन में है।

सुन रहे थे आप फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से सुखविंदर सिंह की आवाज में ट्रैक विशाल शेखर का, कंपोजिशन इशाद कामिल के बोल। और अगला ट्रैक दोस्तों मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ जिनको डांसिंग का काफी शौक है, जिनको जिनके अंदर डांस का कीड़ा है, जिनको डांस के सिवा कुछ नहीं सोचता। तो आइए सुन लेते हैं अगला ट्रैक उन लोगों के लिए।

0: फिल्म ए बी सी डी से दोस्तों, यानी एनीबॉडी कैन डांस से सुन रहे थे आप मोहित चौहान और प्रिया पंचल की आवाज में। ये ट्रैक सचिन जिगर का कंपोजिशन और मयूरपुरी के थे बोल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

फिल्म जब तक है जान से दोस्तों नीति मोहन लेकर आई थी। एट फ्रैक एयर है मंगा कंपोजिशन गुलजार के बोले। और दोस्तों अगर अपने इस गाने की वीडियो देखिएगी तो शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा कश्मीर की वादियों में भले ही रोमांटिक ना हो लेकिन काफी मजा ले रहे थे इस गाने में। और दोस्तों छुट्टी के दिन भी आना होगा कार्यालय। जी हाँ, छुट्टियों के दिन में कार्यालय पूरी तरह खाली नहीं रह सकता। छुट्टियों के दिनों में भी उपस्थिति अनिवार्य होगी भले ही बारी बारी से काम करना पड़े। इस बार स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी प्रशासनिक कार्यों के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को शनिवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। यदि अवकाश के दिन काम करने की आवश्यकता हो तो संबंधित शाखा अधिकारियों को निर्देश देगी। इसके अतिरिक्त उस दिन उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की सूची संबंधित शाखा प्रमुख द्वारा अवकाश के एक दिन पहले शाम 4 बजे तक शाखा को भेजी जानी चाहिए।

या दोस्तों मूड तुम्हें रोमांटिक कर ही दियो आप लोगों का। आप सुन रहे थे फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शेखर रफजियानी, सलीम मर्चेंट, नीति मोहन की आवाज में ट्रैक कंपोजिशन विशाल और शेखर की लिरिसिस्ट अनविता दत्त। दोस्तों यहां पर जो था इस गाने में कि प्यार है लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको अगर प्यार का इजहार करना है और करना है किसी को प्रपोज तो अगला ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है, तो ये आपके लिए डेडिकेट है। और अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो सुना दीजिए ये ट्रैक अपनी प्रेमिका और प्रेमी को।

0: फिल्म बॉडीगार्ड से दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक एश किंग और क्लिंटन सेरेजो की आवाज में, हिमेश रेशमिया का कंपोजिशन और शब्बीर अहमद नीलेश मिश्रा के थे बोल।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा युवाओं को औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर में रोजगार देने और अतिरिक्त रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की एक प्रमुख प्रोत्साहन योजना है। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के माध्यम से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य है 3.5 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करना। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक ये लागू होने की अवधि है। कर्मचारियों को लाभ पहली बार औपचारिक नौकरी पाने वाले युवाओं जिनके वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह तक है, ईपीएफओ में पंजीकरण पर 15,000 तक प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। नियुक्तियों के लाभ की अगर बात करें दोस्तों तो नए कर्मचारियों को काम पर रखने वाले नियुक्तों को 1 लाख रुपए तक का मासिक वेतन वाले एक नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनियों के लिए प्रोत्साहन 4 साल तक दिया जाएगा। अगर इसकी बजट की बात करें तो योजना के लिए कुल बजट 99,04,466 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। रोजगार देने वाली कंपनियां और पहली बार नौकरी पाने वाली युवा ईपीएफओ के प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
1: 107 एफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: 3:33 PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ शो चल रहा है 3 का तड़का आपके अपने चैनल पर यानी 107 एफएम रेनबो पर रहने वाला हूं इस कार्यक्रम में, इस शो में आप लोगों के साथ 4 बजे तक। जी हाँ, लेकर आया हूं धमाकेदार ट्रैक्स बैक टू बैक आप लोगों के लिए। और आप हमारा ये कार्यक्रम सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर ही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लें, जी हाँ न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती का अगर ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर लेना दोस्तों, तो आप फटाफट और यूं चुटकी बजाकर आप सुन सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ। जितने भी शाहरुख खान के फैन हैं और जितने भी शाहरुख खान के डांस के फैन हैं, आइए अगला ट्रैक उनके लिए है।

0: सुन रहे थे आप फिल्म रावण से एकॉन और हमशिका अय्यर की आवाज में ट्रैक विशाल शेखर का कंपोजिशन और दोस्तों लिरिसिस्ट विशाल ददलानी और जो तमिल वाला जो लिरिसिस्ट था दोस्तों वो लिखी थी निरंजन अय्यंगर ने।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
0: जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। और शाहरुख खान के बाद दोस्तों सलमान खान कैसे बीच पीछे रह सकते हैं, और जो सलमान खान के फैंस है आइए वो भी हाजिरी लगा दीजिए क्योंकि अगला ट्रैक आ रहा है आप लोगों के लिए।

और दोस्तों ये गाना मैं अपने आप को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आप लोगों के बिना 12 मिनट 12 सेकंड क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकता। आप सुन रहे थे फिल्म रेडी से ये ट्रैक अमृता काक मीका सिंह की आवाज में, देवी श्री प्रसाद का संगीत, लिरिसिस्ट थे आशीष पंडित। और दोस्तों अगर आप भी एक बैचलर ट्रिप पे जाना चाहते हैं और वो भी यूरोप में और वो भी स्पेन की गलियों में घूमना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो अगला ट्रैक दोस्तों आपको एंजॉय करने के लिए, अगर आपको नाचने के लिए और आपका जो मूड है एकदम फुल ऑन मस्त करने के लिए, अगला ट्रैक आपके लिए ये तो मैं लेकर आ रहा हूँ।

फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से दोस्तों फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल लेकर आए थे ट्रैक शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन जावेद अख्तर के बोल। और शक्तिपुंज एक्सप्रेस में एसी थ्री टीयर को, जी हाँ दोस्तों, यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 1147 और 1148 हावड़ा जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस की कोच संरचना में संशोधन किया जा रहा है। संशोधित व्यवस्था के तहत 2 एसी थ्री टीयर इकोनॉमी कोचों के स्थान पर 2 नियमित एसी थ्री टीयर कोच लगाए जाएंगे, जिससे ट्रेन में एसी थ्री टीयर कोचों की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो जाएंगी। हालांकि ट्रेन में 22 LHB कोचों की कुल संरचना यथावत रहेंगी। संशोधित कोच संरचना 1147 जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस में 11 सितंबर 2026 से तथा 1148 हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस में 13 सितंबर 2026 से प्रभावित होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि उपयुक्त व्यवस्था का संज्ञान लें तथा अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुरूप बनाएं।

फिल्म सिंघम से दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक श्रेया घोषाल और अजय की आवाज में, कंपोजिशन अजय अतुल की और बोल लिखे थे स्वनंद किरकिरे ने। दोस्तों देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं हमारे कार्यक्रम की आखिरी लगभग 5 मिनट में, और दोस्तों अभी वक्त हो गया है कि मैं बढ़ चलूं एक आखिरी ट्रैक की तरफ, एक लास्ट ट्रैक की तरफ आप लोगों के लिए, और इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाज़त। लेकिन दोस्तों सिर्फ थोड़ी देर के लिए इजाज़त लूँगा क्योंकि मैं आप लोगों से मिलूँगा फिर FM विंडो पर ठीक 7:02 पर, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं FM गोल्ड पर भी ठीक 5:15 पर। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 107 FM विंडो पर, क्योंकि अगला जो कार्यक्रम है वो आने वाला है थोड़ी देर में आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर में आप लोगों के लिए आने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तुम्ही सुनछो वीकेंड कैफे 107 FM रेनबो ते। वीकेंड कैफे, वीकेंड कैफे।

गुड इवनिंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है दोस्तों उसन एफएम रेनबो पर। आपका दोस्त आरजे अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके जाने अनजाने। घड़ी में बज चुके हैं 7:03 और अब शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम छायालोक पर जाने अनजाने। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की दुनिया सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली

कहानियां तक सीमित नहीं होती है। हर फिल्म, हर गीत और हर किरदार के पीछे छिपे होते हैं कई ऐसे दिलचस्प किस्से जिन्हें जानकर मजा दोगुना हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम तो है 9 बजे तक, लेकिन मैं रहूंगा आप लोगों के साथ 8 बजे तक। और इस 8 बजे तक दोस्तों हम सुनेंगे कुछ शानदार गीत, और हर गीत से पहले जानेंगे उससे जुड़ा एक ऐसा जाना अनजाना किस्सा जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस पहले ट्रैक के साथ।

फिल्म कॉकटेल 2 से दोस्तों आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में, ट्रैक प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। दोस्तों क्या आप जानते हैं फिल्म वेकअप सिड की कहानी सिर्फ युवाओं को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई थी। निर्देशक आयन मुखर्जी चाहते थे कि हर उम्र का इंसान अपने भीतर के उस सिड को पहचान सके जो कभी ना कभी जिंदगी में अपनी मंजिल तलाशता है। और एक दिलचस्प बात, फिल्म का गीत इकतारा रिकॉर्डिंग के बाद इसके संगीत में बहुत कम बदलाव किए गए। पूरी टीम को लगा कि इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी ये गीत उतना ही ताजा महसूस होता है। सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। और दोस्तों

अगर आपके पास भी कोई ऐसा दिलचस्प दिलचस्प किस्सा है किसी कहानी को लेकर, किसी मूवी को लेकर, किसी गाने को लेकर, तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341।

फिल्म वेक अप सीट से दोस्तों कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, अमिताभ त्रिवेदी का संगीत और जावेद अख्तर के बोल। दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर लगता है जैसे किसी ने हमारे मन की बात सुरों में ढाल दी हो। एक तारा भी ऐसा ही एक गीत है। चलिए अब चलते हैं एक ऐसी फिल्म की ओर जिसने दोस्ती, सपनों और जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भारत के अलावा

फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में भी की हुई थी। वहां फिल्माए गए कई दृश्य अचानक बनाए गए थे ताकि सफर का एहसास बिल्कुल स्वाभाविक लगे। और एक दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों कि इलाही गाने में रणबीर कपूर कई जगह सचमुच यात्रा आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। निर्देशक आयान मुखर्जी चाहते थे कि कैमरा अभिनय नहीं बल्कि असली मुस्कान कैद करे। तो अगर आपका भी मन कहीं दूर निकल जाने को करता है तो ये गीत आपके लिए है।

फिल्म ये जवानी है दीवानी से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक। प्रीतम का कंपोजिशन अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। दोस्तों सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम सफर नहीं होता, कई बार रास्ते ही हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। 7:17 PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है छायालोक, और छायालोक के अंतर्गत दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है जाने अनजाने, जहां पर मैं कुछ किस्से और कहानियां बता रहा हूं किसी फिल्म से जुड़े हुए या किसी गाने से जुड़े हुए। दोस्तों मैं रहने वाला हूं कार्यक्रम में 8 बजे तक, लेकिन हमारा कार्यक्रम जाने अनजाने रहेगा 9 बजे तक आपके साथ।

और अगर आपके पास भी किसी का फिल्म को लेकर या किसी गाने को लेकर किससे कहानियां हैं तो आइए हमसे जुड़ जाइए। हमारा फोन नंबर है 2213-1341। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों, फिल्म बर्फी में रणबीर कपूर ने अपने किरदार की तैयारी के लिए चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटन जैसे मूक सिनेमा के कलाकारों की कई फिल्में देखी। यही वजह है कि फिल्म में कई भाव बिना संवाद के सिर्फ चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से व्यक्त किए गए। और अगर संगीत की बात करें तो फिर ले आया दिल सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं बल्कि अधूरी मोहब्बत की खामोशी दास्तां है। आइए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाला नगमा।

फिल्म बर्फी से दोस्तों आप सुन रहे थे दिल को छू लेने वाला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, प्रीतम का संगीत और सैयद कादरी के बोल। दोस्तों फिल्म रॉकस्टार में जॉर्डन का किरदार निभाने के लिए रणबीर कपूर ने गिटार बजाने की ट्रेनिंग भी ली थी ताकि स्क्रीन पर उनका अंदाज बिल्कुल स्वाभाविक लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कुन फाया कुन की शूटिंग दिल्ली के ऐतिहासिक हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में हुई थी। शूटिंग के दौरान वहां के माहौल और परंपराओं का पूरा सम्मान रखा गया और यही वजह है कि इस गीत में एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास महसूस होता है। AR रहमान का संगीत इरशाद कामिल के बोल और मोहित चौहान की आवाज इस गीत को सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि एक अनुभव बना देते हैं। तो आइए सुनते हैं कुन फाया कुन।

फिल्म रॉकस्टार से मोहित चौहान, जावेद अली, ए आर रहमान की आवाज में ये गीत दोस्तों संगीत से सजाया था खुद ए आर रहमान ने, बोल से सवारा था इरशाद कामिल ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ दोस्तों, मन की बात सुनना ना भूले 26 जुलाई को, और 7:29 PM हो चुका है दोस्तों। आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है जाने अनजाने आपकी अपनी चैनल पर, यानी 107 FM रेनबो पर। आरजे अंकित आपके साथ रहने वाला हूँ, 8 बजे तक सुना रहा हूँ बैक टू बैक कुछ बेहतरीन ट्रैक्स। और जाने अनजाने में दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोगों की नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ किसी फिल्मी किस्सों के बारे में या फिर किसी गानों के किस्सों के बारे में दे रहा हूँ जानकारी। और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ जानकारी है तो आइए हमसे शेयर करिए। हमारा फोन नंबर है 2213-1341। दोस्तों निर्देशक गौरी शिंदे चाहती थी कि डीएस जिंदगी किसी भारी भरकम संदेश वाली फिल्म ना लगे, बल्कि एक ऐसी कहानी बने जिसमें हर इंसान खुद को कहीं ना कहीं देख सके। इसी सोच की झलक लव यू जिंदगी में भी दिखाई देती है। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान कोशिश यही थी कि वह इसे बिल्कुल हल्का, सहज और जिंदगी का जश्न मनाने वाला बनाया गया। शायद यही वजह है कि यह गीत आज भी कई लोगों की फील गुड प्लेलिस्ट का हिस्सा है। तो आइए जिंदगी का एक मुस्कान के साथ सलाम करते हुए सुनते हैं लव यू जिंदगी।

0: फिल्म डियर जिंदगी से दोस्तों जसलीन रॉयल रेगलाई थी, ट्रैक अमित त्रिवेदी का संगीत कौशल मुनीर के बोल। दोस्तों कुछ फिल्में मनोरंजन करती है और कुछ फिल्में सोचने पर मजबूर कर देती है। अब बारी है एक ऐसी फिल्म की जिसने हौसले और मेहनत की एक सच्ची कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा। दोस्तों क्या आप जानते हैं फिल्म 12 फिल्म की शूटिंग कई वास्तविक स्थानों पर की गई ताकि कहानी जितनी हो सके उतनी सच्ची लगे। फिल्म का यह गीत रीस्टार्ट सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक संदेश है। अगर जिंदगी में कभी ठोकर लगे तो वहीं रुकने के बजाय फिर से शुरुआत की जा सकती है। यही सोच इस फिल्म को लाखों दर्शकों के दिल तक ले गई। तो आइए सुनते हैं उम्मीद और हौसले से भरा यह गीत।
1: पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई तो करे रीस्टार्ट।

0: restart.
1: फिल्म 12 फेल से दोस्तों सुन रहे थे शान की आवाज में यह गीत, शांतनु मोइत्रा का संगीत, सोनंद किरकिरे के बोल। उम्मीद है दोस्तों अब तक का ये संगीत भरा सफर आपको पसंद आ रहा होगा। 7:39 पीएम हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है जाने अनजाने आपके अपने चैनल पर, यानी 107 FM रेनबो पर रहने वाला हूं मैं 8 बजे तक, लेकिन हमारा कार्यक्रम रहने वाला है 9 बजे तक आपके साथ। और जाने अनजाने दोस्तों मैं कुछ दिलचस्प किस्सा आपको सुना रहा हूं किसी फिल्म से रिलेटेड, किसी मूवी से रिलेटेड या फिर किसी गाने से रिलेटेड। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई किस्सा है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 2213-1341। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। दोस्तों जब भी फिल्म शेरशाह का जिक्र होता है कैप्टन विक्रम बत्रा का बहादुरी सबसे पहले याद आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के निर्देशक चाहते थे कि युद्ध की कहानी के साथ साथ विक्रम और डिंपल चीमा की प्रेम कहानी भी उतनी ही सच्चाई से सामने आए। इस सोच के साथ रातल लंबिया को फिल्माया गया। इसकी सादगी और भावनात्मक प्रस्तुति ने इसे रिलीज होते ही दर्शकों को पसंदीदा बना दिया। तो आइए सुनते हैं।

0: फिल्म क्रू से दोस्तों सुन रहे थे दिलजीत दोसांज और बादशाह की आवाज में, ये ट्रैक राज रंजौत का संगीत, राज रंजौत और बादशाह के बोल। और आइए दोस्तों एक और दोस्त आ चुके हमारे साथ फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नमस्ते, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: हेलो, गुड इवनिंग भैया।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग,
1: मैं जीतू बातें कर रहा हूँ उड़ीसा से।
0: हाँ जीतू बोलो, आज क्या कहना चाहोगे हमारे आज कार्यक्रम में?
1: और भैया आपका जो आवाज रहा है ठीक से नहीं आ रहा है।
0: ठीक से नहीं आ रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। चलो अभी ठीक से आ रही है।
1: और जो आपका आवाज जो है साउंड की वजह से ठीक से मेरे पास आ नहीं रहा है, और मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा।

0: अच्छा ठीक है, तुम टॉपिक पे बताओ क्या बोलोगे आज।
1: हेलो।
0: हाँ हेलो बोलो।
1: अभी आवाज आ रहा है तो आप आपका प्रोग्राम सुन रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक गाना था आज की फिल्म का, तो उस फिल्म का जो गाना था, मतलब उसमें जो दिखाया गया था, जो गाना होता है अरिजीत सिंह का जो गाना था उसमें, तो उसमें जो हीरो हीरोइन जो थी, तो इस तरह से वो गाना और एक जो पहले का जो मतलब आज जो बाद में जो आया था अरिजीत सिंह का आज की टू का, था तो वो गाना का जो मतलब एक किस्सा है, मतलब दोनों जो है ना, जैसे कि जैकेट जैकेट वाला, मतलब जो जैकेट पहन के, मतलब जो हीरो हीरोइन जो है, मतलब रहती है, मतलब शूटिंग ऐसा हुआ है, तो वो किस्सा हमको मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मतलब उसका जो सीन था और उस गाने का जो
0: अच्छा है ना, तो तुमको उस सीन का भी पसंद आया?
1: आज की का और आज की टू का दोनों का मुझे, मतलब
0: जैकेट वाला सीन ना,
1: वो जैकेट वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था।
0: ओके थैंक यू जीतू आने के लिए साथ फोन लाइन पे, थैंक यू, ऐसे ही आते रहो और जुड़ते रहो हमारे साथ। दोस्तों बॉलीवुड की कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसका संगीत रिलीज से पहले ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। अब सुनते हैं एक ऐसा ही फिल्म का गीत। फिल्म भेड़िया भले ही एक हॉरर कॉमेडी थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा रोमांटिक आकर्षण बना अपना बना ले। दिलचस्प बात यह है कि इस गीत को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अपने वीडियो और शॉर्ट वीडियोस में इस्तेमाल किया। देखते ही देखते ये साल के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में शामिल हो गया। तो पेश है

फिल्म भेड़िया से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज सुन रहे थे। ट्रैक सचिन जिगर का कंपोजिशन अमिताभ भट्टाचार्य की फिल्म बोलते दोस्तों। फिल्म जवान में एक्शन के साथ साथ रोमांस को भी खूबसूरती से जगह दी गई। चलिया की शूटिंग कई मनमोहक लोकेशन पर हुई और निर्देशक एटली चाहते थे कि इस गीत में शाहरुख खान और नयनतारा के किरदारों को शांत और भावनात्मक पक्ष भी सामने आए। अनिरुद्ध रविचंद्र के संगीत और अरिजीत सिंह की आवाज ने इस गीत को रिलीज के साथ ही चार्टबस्टर्स बना दिया। तो आइए आज के इस खूबसूरत सफर का एक और गीत सुनते हैं।

फिल्म जवान से दोस्तों अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में आप सुन रहे थे। ये ट्रैक संगीत से सजाया था अनिरुद्ध रविचंद्रन ने, बोल से सवारा था कुमार ने। और दोस्तों अब हम बढ़ेंगे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। और आखिरी गीत का किस्सा दोस्तों ये है कि निर्देशक नीतेश तिवारी जो फिल्म छिछोरे डायरेक्ट किए थे, चाहते थे कि छिछोरे सिर्फ कॉलेज लाइफ की कहानी ना रहे बल्कि यह जिंदगी में हार और उम्मीद का संदेश भी थे। खैरियत इसी भावना को खूबसूरती से सामने लाता है। तो दोस्तों हम बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम के इस आखिरी गीत की तरफ और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अ वेरी हैप्पी वीकेंड। मैं आप लोगों से मिलूंगा फिर बहुत जल्द, ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। और आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं सिर्फ जा रहा हूँ स्टूडियो से, लेकिन हमारा कार्यक्रम जाने अनजाने समाप्त नहीं हो रहा है। ये होगा समाप्त यानी 9 बजे और 8 बजे 8:02 से आपके साथ जुड़ेंगी पूनम जी। हाँ, पूनम बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को आगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस ट्यून करके रखना है 107 FM रेनबो।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

गीतकार और संगीतकार हैं मिथुन, आवाज अरिजीत सिंह की और फिल्म का नाम कबीर सिंह। अरिजीत सिंह आज के दौर के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली गायकों में से एक है। उनका सिंगिंग स्टाइल और उसके बारे में अगर मैं बात करने जाऊं ना, तो इतनी सारी उसमें खूबियां हैं, बल्कि कहना चाहिए कि खूबियों का मिश्रण है जो उन्हें दूसरे गायकों से अलग बनाता है। तो चलिए, जब इन खूबियों की बात हो गई, अलग होने की बात हो गई, तो एक खूबसूरत सा अलग सा नगमा तो बनता है ना, तो फटाफट आप सब तक पहुंचाए देती हूँ एक खूबसूरत सा नगमा। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: आठ बजकर 16 मिनट और आज मेरा मूड है कि मैं अरिजीत सिंह की गायकी के बारे में बात करूं। अरिजीत की सबसे बड़ी ताकत उनकी आवाज में छुपा हुआ दर्द और जज्बात है। चाहे गाना सैड हो या फिर रोमांटिक, वो गीत के बोलों को इतनी शिद्दत से महसूस करके गाते हैं ना कि सुनने वाला उसमें खो जाता है। उनकी आवाज में एक ऐसी मासूमियत और ठहराव है जो सीधे दिल तक पहुंचती है ना। तो ऐसा ही एक खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:24। अरिजीत सिंह एक बेहतरीन ट्रेंड गायक हैं। उनकी सुर लगाने की कला बहुत साफ है। उनकी हरकत और मुर्गियां लेने का जो अंदाज है ना, वो आप कह सकते हैं कि एफर्टलेस होता है। वो बड़े से बड़े सुर को बहुत सुकून से लगाते हैं, जिससे उनकी गायकी में एक नेचुरल फ्लो बना रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बहुत मेहनत कर रहे हैं या उस काम को करने में बिल्कुल चेहरे पर शिकन आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं। बस लगता है एकदम आराम से, मुश्किल से मुश्किल गाना एकदम दिल से गा देते हैं। यही सारी तो खूबियां हैं ना, जो अरिजीत सिंह को दूसरे सिंगर से अलग बनाती है ना। तो फटाफट एक और गाना अरिजीत सिंह का आप सबके लिए सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: 8:33 हालांकि अरिजीत सिंह को उनके रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा उन्हें उसके लिए जाना जाता है, बादशाह भी माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी वर्सटैलिटी भी साबित की है। कैसे, बताती हूँ। उनके गाने जो होते हैं ना, उसमें अक्सर सूफी संगीत का प्रभाव दिखता है, जो उन्हें एक अलग खुलापन और गंभीरता दोनों एक साथ देता है। वो पुरानी गजल गायकी को इस अंदाज से पेश कर सकते हैं कि आज के मॉडर्न म्यूजिक और साथ ही साथ ये जो पुरानी गजल है, उन दोनों का एक अजीब सा बल्कि बहुत खूबसूरती से उसे जोड़ देते हैं और एक नए अंदाज में उसे पेश कर देते हैं। तो बस इनकी गायकी के बारे में जितनी भी बातें की जाए ना, कम है। फिलहाल एक बेहद खूबसूरत नगमा अरिजीत सिंह की आवाज में, सुनते रहिए, साथ रहिए।

कॉम्प्लेक्स बनाने की भी कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे बहुत ईजी रखते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी रखते हैं कि सुनने में जो भी सुनता है ना उसे बस उस गाने से जुड़ सा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसी दुनिया में खो गया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह है। और यही वजह है ना कि हर उम्र के लोग उनके गाने पसंद करते हैं, उनके गाने सुनना चाहते हैं। तो बस जब गाने सुनना चाहते हैं तो फटाफट पहुँचाए देती हूँ देर किस बात की। बेहद खूबसूरत नगमा, सुनते रहिए, साथ रहिए

8:53 और कुछ गीत अपने आप में इतने खूबसूरत होते हैं कि उसके बाद कुछ भी कहने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और अभी अभी आपने ये जो गीत सुना ना फिल्म एक विलन से, ये ऐसा ही एक गीत है जिसके बाद कुछ कहने और सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। बस गुंजाइश इस बात की है कि एक और खूबसूरत नगमा आप सब तक पहुँचाया जाए। सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:57 मिनट और अब पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय बाय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तुम्ही सुनचो वीकेंड फिल्मी फीवर 107 FM रेनबो ते। वीकेंड फिल्मी फीवर। वीकेंड फिल्मी फीवर।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।